उस गोविंद दे गुण नहीं गाए, जन्म बिरथा गवा लिया, ओदा सिमरन इस तरह कर जिस तरह मच्छी

शरीर नू इस जवानी नू बुढ़ेपे ने काबू कर ले, बुढ़ेपे ने जीत ले, हाले भी तू सिमरन नहीं करदा, तेरी उम्र बीतती जा रही है।

सारे सुख देने वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

सियाने लोको इस शरीर 75 साल का बने है अते जिसने ये जीव बनाया है उस दे विच ही आखिर समा जाना है।

निंदिया की थी तामी कोई परवाह नहीं, जिदे वास्ते सोना ते लोहा एक समान है भाई, ओ इंसान मुक्ति नु प्राप्त समझे।

एक आदमी आया, उत्ते शाल दे गया, ठंड का वेला सी, कीमती शाल मिलिया पर कोई खुशी नहीं। एक आदमी आया।

प्रसादे का थाल अगे रखिया, खान लगे ने। एक होर आदमी आया, वो अगों थाल चुके ते आप खा गया। भोजन आया,

अपनी जीव दे नाल उस गोबिंद दे गुण गाओ, कन्ना दे नाल उहदा जस सुनो, ते फिर भाई तुसी जमा दे वस नहीं पाओ।

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरदा है, पर करोड़ां दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन

पानी का पतीला रख दी, पानी गर्म हो जाए ते आग दे तेज बलन दे नाल पानी उबल दे ते बुलबुले उठ दे ने पानी दे। गुरु साहब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठदे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह की।

दुखी हो गया ते सारिया ने साथ छड़ दिता, पर याद रख सारे साथ साथ छड़ जांदे नहीं, पर एक परमेश्वर जिहड़ा है वो हमेशा सहाई रहिंदा है।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझ के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं गवा ली भजन तू बगैर बिरथिया नहीं।

झूठे मान क्यों कर दे, जगत नु सुपने दी तरह समझ, कुछ भी तेरा नहीं। गुरु नानक ए गल सच्ची कहंदे, करदा मालिक सारी उम्र तिया पुत्रां दी पालना करदा, पाप करके कमाई करदा, दिन रात भज फिरदा माया वास्ते, जदू मरदा वेड़े विच पिया हुंदा, फट्टे ते पांदे ने जिन्हां तियां पुत्रां दी पालना कीती, फिर ओही कहंदे ने इहदियां जेबां फोड़ लो, घर दियां चाबियां तां नहीं जेब विच, किधरे माया वाला बटुआ तां नहीं पाया, जे पाया है तां कढ लिया, हाथ देख लो कोई सोने दी अंगूठी तां नहीं पाई, कड़ी तां नहीं पाई, जे पाई तो वह भी ला ली, जिस चंगा सूट पाया तो वह भी ला लेंदे ने। घर दा मालिक एक कफन पा के उही तिया पुत्र लैके तुर पैंदे ने, शमशान घाट लै गए, जे कफन चंगा है ते कई बारी साड़न वाला वह भी ला लेंदा है, माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी है भाई आया ते नंगा सी, ये कफन किथे लै चले हैं, वो कफन अग सांभ लेंदी, शरीर भी नाल नहीं जांदा। ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू जिन्ना वास्ते पाप करदा है किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना, उन्होंने ही तेनू नंगा करके घरों बाहर कढ़ना है, क्यों झूठे मान करदा है।

आखो भगवान ने उस इंसान का शरीर जड़ा है इंसान का नहीं, वो कुत्ते का समझ सूर का समझ।

ते सारा जगत झूठा है। रचना सब बिनसन वाली है, जिस तरह रेत की कंध खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस संसार

बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू रखिया।

धन पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी ता पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिड़ा जन्म है

मन क्यों बहरा करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम। तकरीबन छेवां हफ्ता या सतवां होएगा। एक प्रकरण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में साडा मन विक जे। छे विशेषताइयां आप जी नाल गुरु सांझियां करा रहा है। पांच आप जी सरवण कर चुके हो, अज छेवीं दी बारी है। कुछ संगत नवी आई हुई है, केवल बोल के लंघदे हां। पहलियां पांच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई खालसा जी धरती ते समय समय अनुसार जितने भी अवतार आए, मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, होर भी द्वापर दे, त्रेते दे, होर भी समय अनुसार अपनी ड्यूटी दे के धरती तो चले गए। एक गुरु नानक के दसवें जामे तो बाद भी धरती तो गए नहीं। दसवें जामे तो बाद शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिक गए। तरस खा के दुनिया दे बेड़े बने लाण दे लई कि ओहो जागदी जोत है, ओहो हाजर नाजर जो ते बाकी अवतार गए, गुरु नानक गया नहीं। दसवें जामे तो बाद शब्द रूप विच टिक गए। भर भर के पूर पार लगाउण लई दूजी विशेषता ही धरती ते जितने भी ग्रंथ ने सत्कार योग ने ओ रब दी गल करदे ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी विशेषता ही ए रब नाल गल्लां कराउंदी है। आखो सतनाम। कोई करण आला होवे। असंगत सारी शब्द पढ़ रही होवे, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, दसां पातशाहियां चो जिथे भी शरदा होवे, चरणा च मन रखिया होवे, सिद्धियां गल्लां हुंदियां ने। उस वेले एक बाणी है जिहड़ी गल्लां करांदी है। केवल किते स्रोता बनन दी जाच आ जाए। बाकी ग्रंथ रब दी गल करदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रब नाल गल्लां कराउंदी है। तीसरी विशेषताई ना दीपक राग ना मेघ राग, सतगुरु ने दोनों जगह नहीं दिती। सानू सड़क बख्शीए, जे तेरी जिंदगी च खुशी आ जाए ते एहो जा मेघ नहीं मैनू चाहिदा। भंगड़िया वाला कोई भाणा वरत जे ते अत सोग रोने धोने वाला नहीं चाहिदा, दीपक भी नहीं जोड़। आखो सतनाम। इस समय दे मशहूर राग सन, पर महाराज ने इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब च जगह नहीं दिती। डिटेल सरवण कर चुके हो। चौथी विशेषता

भाई शाह भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसे जपा तपा दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते हुए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखिया उसने सब तो पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेकां जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया। एडी मान महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहिंदे न हों अपराधी। आ जो तुसी शब्द सरवण कर रहे हो, गल्ली असी चंगी हां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ए शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ए अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, गल्ली असी चंगी हां, असी गल्लां करके तो बड़े चंगे बनन दा जतन करदे हां, पर ऐसे हां नहीं। हे वाहेगुरु, असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझते हां, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां। असल विच असी माड़े पासे जा रहे हां। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु, तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे न, मैं तां रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा। चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उस दे लिखारी हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ के वेद व्यास होंदे हुए भी आप कहिंदे हन हों अपराधी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरा दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हन ते पिछे बहुत संगत जा रही। किसे ने वेख्या भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनियां संगतां जा रही हन, तां पुछन

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

बड़े सुंदर लोकी कपड़े पाते ने, चंगे तो चंगे कपड़े पाते ने, पर सतगुरु कहते हैं सब तो चंगा कपड़ा केड़ा है, जिस नाल पत रह जाए। जे कपड़े पा के भी साड़ी बेपत्ती हो रही है, फिर चंगा कपड़ा केड़ा है, जिस नाल पत रह जाए।

तू निरंकार वाल चल। देखी जे तू थोड़ी जी अड़ी करेगा, जे तू इधर उधर जाएगा, तो मैं तेन प्रेम दिया चाबक मारांगा जब सतनाम श्री। देखी किधर रस्ता ना भुल जाई, मैं दसों द्वार वाल लै जा, मैं दसों द्वार तो निरंकार वाल लै जा जब सतनाम श्री, क्योंकि मेरा जीवन मिले ही निरंकार वाल जाने वास्ते। ठीक कहें भगत कबीर जी।

कोई रसना खाली ना रहे। पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरी भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख दे कर्तव लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

कबीर जी कथन कर दे हन, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आध, भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सोला, थोड़ा जा बहुता समा जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहेगुरु दी याद विच गुजरदा है, ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा, बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता, इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिलिया, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदियां ने गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समा सिमरन विच जप तप विच बतीत होंदा है, समा ओ सफल है

गुरु साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारे है, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है, ए सारा संसार डुबदा जा रहा है। कल मैं राम नाम सार है भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीठे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते।

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गया ते गुरु साहिबां ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन। उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं ता संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोहना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इम बयान कर दे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

सब कहन लगे एहो जी संत चंगे नहीं लगते जेड़े डाला कहंदे ने टाणिया नूं पेड़ा दरख्त नूं गटकावे खा जाना कि जेड़े टाणिया समेत ही दरख्त नूं खा जांदे ने भाव के माया पिछे इंसान

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने, सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे तोय चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेकी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो पैना बड़े वड़े संत महापुरुष आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन कर दे ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नु संत समझ के पर बगला जिहड़ा एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के ते ओदो ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नू मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है भगत जी कहंदे ने ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नू लुट पुट के खा

है पाई, काहे को कीजे ध्यान जपना। जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बैंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपे है, उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तु

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई गुरदास जी कहिंदे ने

कबीर गुरु धारण कर लें ते स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने एक दिन उठे की वेखदे ने स्वामी रामानंद जी अमृत वेले उठ के गंगा इशनान जांदे ने कहिंदा क्यों ना ऐसा होवे कि मैं इन्हां तों पहले उठ पवां जे इन्हां कोलों कुछ लैणा ही कबीर इन्हां तों पहले उठ ते जिस रस्ते जांदे ने उस रस्ते विच लम्मा पैगा हो सकदा तेरे ते नजरे करम हो जाए कबीर बरसाती ओ सिंगड़ा जिहा रस्ता ओदे विच लम्मे पै ने स्वामी रामानंद जी पौया ते सवार अमृत वेला तुरे आउंदे हुण जिस वेले स्वामी रामानंद जी आए स्वामी रामानंद जी दे चरणां दी छोह होई हुण स्वामी रामानंद जी ने कहा पता नहीं कौन पे है इंज जापदा जिवें कोई मृतक शरीर है ते साध संगत चरणां दी छोह लगण दी देरी सी अज अपने मुख एक बचन कहा उठ राम के लोका राम को बस इनी गल कहण दी देरी सी कबीर ने माला फड़ ली राम राम राम शुरू है ते साध संगत हुण भगती करदे आ जिस वेले उन्हां उच्चियां जातां वाले ने तकिया हुण मन च ख्याल आ गया कि कबीर दा गुरु केड़ा है कबीर नूं दिखिया किन्ने दिती है यह माला किवें फड़ के बह गया यह ते नाम नहीं जप सकदा क्योंकि उस वेले उन्हां पंडतां ब्राह्मणा ने यह उपदेश दे दिता कि उच्चियां जातां वाले ही नाम जप सकदे ने छोटी जात वाला नाम ही नहीं जप सकदा सत संगत हुण ध्यान देना पुछ कीती तेरा गुरु कौन है कहन लगा जी स्वामी रामानंद जो स्वामी रामानंद जी का नाम लिया कहन लगे ए हो ही नहीं सकता ओ ते शूदर नू मथे नहीं लांदे तेनू किवें दिखिया रिड़ती कहन लगा मेरे ते यकीन नहीं ते जाके स्वामी नू पुछ स्वामी रामानंद जी पास आए कहन लगे स्वामी जी कबीर कदों शिष्य बनाया करो दिखिया दिती जे कहन लगे कबीर मेरा शिष्य नहीं है मैं दिखिया नहीं दिती कह लगे महाराज ते तुहाडा नाम जप रहे कह लगे बुलाओ कबीर नू हुण कबीर नू बुलाया ना जिस वेले स्वामी रामानंद जी ने एक पर्दा तान लिया एक पासे स्वामी रामानंद जी ने एक पासे कबीर है विच पर्दा है ते साध संगत मैं पर्दे दा जिक्र कर दिया पर्दा एक भरम है ख्याल करना पर्दा एक भरम है हुण वेखो ये भरम हटदा किवें कबीर कण तेनू दीखिया दिती कह लगे स्वामी जी अमृत वेला याद करो उस दिन दा अमृत वेला याद करो जिस वेले अमृत वेले तुसी चरणा दी छो दे के मैनू अपने मुखो आख्या उठ राम के लोका राम को ए दीखिया नहीं ते और की है बोलो राम सिख समझाई तुसी राम इन्हां दे कन्ना विच कहिंदे हो मैनू उच्ची आवाज नाल तुसी के ते मैं राम दा नाम जपन लग पे कहते ने स्वामी रामानंद जी कह लगे पर्दा हटा दियो गिरा दियो इस पर्दे ओ भाई जिन्हां नूं मैं नाम दिता है ओ अज तक इस अवस्था विच नहीं पहुंच सके स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने कबीर नूं ते मैं अचनचेत राम दा नाम दिता है पर इहदे हिरदे विच इंज नाम वस गया है कहन लगे कबीर सब तो उच्चा हो गया है